सुबह 11 तथा शाम 18 के दौरान अशद जरूरत न होने की सूरत में बाहर निकलने से परहेज किया जाए। आंख के अकबी हिस्से में होने वाली तब्दीलियां दिमागी अमराज का पेश खैमा हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि आंख के पिछले हिस्से में पाए जाने वाली मुतद्दद असाबी खुलियात पर मुश्तमिल और रोशनी के लिए हसास बाफ्त रेटिना में होने वाली तब्दीलियां दिमाग की अंदरूनी परतों में उभरते हुए और बैरूनी तौर पर अभी महसूस न होने वाले मसाइल की वाज़ह तरीन खबर दहिंदा हो साबित हो सकती हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियर रोगोफांग की क्यादत में तहकीकती टीम ने एक वसी डेटाबेस से इस्तेफादा करके 40,000 से ज्यादा शुरका की तकरीबन 63,000 रेटिना तस्वीर को मसनू जहानत की मदद से जांचा है। तैयार किए गए डीप लर्निंग मॉडलों ने उम्र, जिंस, सिगरेट नोशी, नींद के मामूल, डिप्रेशन और खून के दबाव जैसे ऐसे कई अवामल का तजिया किया जो बराह रास्त अल्जाइमर के खतरे से मुंसलिक समझे जाते हैं। हासिल शुदा नतज के मुताबिक जिन अफराद में आने वाले सालों में अल्जाइमर की तशखीस मतवक़ थी, इनके रेटना में बहुत बारीक साख्ती तब्दीलियों की निशानदेही हुई। खास तौर पर बारीक रगों में तंगी, रगों की सख्ती, रगों की कसाफत में कमी और बसरी आसात के पतले पान वाले रिटाना में बढ़ापे के आसार के साथ साथ अल्जाइमर के खतरे को भी बढ़ते हुए देखा गया है। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा तशखीसी तरीके आमतौर पर बीमारी के बाद के मराहल पर मरकूज होते हैं कि जब मुदाखलत के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। रेटना की सेहत जैसी नई नस्ल हयातियाती अलामतों पर तहकीक खतरे के शिकार मरीजों की बहुत इब्तदाई दौर में तशखीस को मुमकिन बनाती है। नतीजतन बर वक्त ज़रूरी जाँचें की जा सकती हैं और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुईं।